0: उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी,
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमरीका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ

0: जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
2: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
3: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
3: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
8: सूरज।
6: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
9: बहुत आसान पूछते हो।
6: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
9: अगली बार में बहुत मुश्किल।
6: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
8: हाँ।
6: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
9: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
6: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
10: वो तारा होता है।
6: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
11: वो रात और दिन भी बनाता है।
6: एकदम सही एकदम
10: वो
6: सही।
10: वो हमें धूप भी देता है।
6: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
9: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
6: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
9: विटामिन डी।

0: हाँ बिल्कुल,
1: वो पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ।
2: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर, हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
4: सर्दी।
0: ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: है।
0: सूरज आग का गोला, लेकिन
4: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
4: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
4: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
4: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
4: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
4: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
4: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
4: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ की नहीं आऊँ?
1: वो भी दस
0: पहेलियाँ। अच्छा चलो, मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: मौसी
0: डर जाती
1: है। और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 11 बजे हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में यह गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, बिलखती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

0: चंद्रदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: रंग तरंग आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO

0: महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर।

शैलेंद्र के बोल थे एसटी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमी, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है।

एक श्रोता हैं जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीला सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने वो रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव, वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़, आसमान, जमीन, ओहो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? पर हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं? और जब छाते हैं बदरा, आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

ये येसुदास के साथ हेमांति शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसें, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं, सफ़ेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है।

अर्जुन की एक कविता मजा आ गया। आपने कविता लिखी फिलीपींस से एक श्रोता का। मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहाँ पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये हैं हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहाँ चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था, वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट, और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मेरे मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़कर पीसकर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम मेरा होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं। मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था न जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो न जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है वो लिख रही हैं कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले

गाने की तरफ जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गाँव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होठों पर, आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है? आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है?

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना ख़त्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं। ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आर्य बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी। एक और श्रोता हैं जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग-अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही हैं कि इतना समय ही कहाँ कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए, और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे, और इसके अलावा कई और श्रोता हैं जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतजार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विचार विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो चाहे

बादल छाए हों, चाहे आप गर्मी से हों हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी, जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था जब मैं कोचिंग जा रहा था, रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं, लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं। इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीज़ें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज़ की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए हैं। ओ हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार पैसेंजर ट्रेन

लंबा सफर बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है, और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था। मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताज़ा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने

कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगीं। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी फैल

1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थी। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।

लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम वो कौन थी, संगीत दिया मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने। और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

0: गले लग जा फिल्म से सुना भी आपने गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और शब्दों में पिरोया था साहिर लुधियानवी ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध को जीतने के लिए एक मंच पर एकजुट होने का आग्रह किया।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाइयों और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सतना जिले में मुहर्रम का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में ताजियों के जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। जबलपुर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विशेष इबादत कर देश में अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बात मौसम की।

प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले दो दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही हैं। पन्ना जिले के बिहरपुरवा गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की प्रबंधन समिति की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट

0: सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल

0: विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद्र की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: हृति से बोल रही हैं, आइए सुनिए सदाबहार नगमे।
1: वो जब याद आए

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: धुवे तू।
1: किशोर कुमार की आवाज में दूर गगन की छांव में फिल्म का गाना था।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में यह गोदान फिल्म का गाना था, अनजान की बोल थी, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ

0: गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक

0: सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम। श्रीला
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: सहनी दिल्ली से। हाँ,
0: शीला जी, क्या हाल चाल है शीला जी?
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी, हमारे भी हालचाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात
1: हाँ
0: बताइए,
1: मैम,
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती हूँ।
0: हाल चाल हैं?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ,
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चल।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है वो लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम, नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप मैं कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप

0: सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो
1: हम्म,
0: आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
1: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए। जी
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी। पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है। एक
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का। मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या
1: जी,
0: हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी। आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि
1: तो
0: आप
1: जी
0: करती क्या है जिंदगी में?
1: दीदी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी,
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में।
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। और रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी, गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट सी बहारी आई, देवी जी के मंदिर

0: इसी बाहिया ही।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
0: जी
1: गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी सुरजीत
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का सुना दीजिए दीदी,
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना
0: कोई
1: चाहती हैं?
0: भी सुना दीजिए।
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं में
1: जी
0: आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी,

0: तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ है, हम तो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउस वाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा। तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला, उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है वो, मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली जी,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: हाँ हाँ जी
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी।
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा है
1: और यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है।

0: और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
0: जी
1: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
0: जी
1: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
0: जी
1: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
0: हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए, रेडियो कब सुनती हैं आप?
0: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के
0: या
1: हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे
0: हाँ
1: मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए
0: जी
1: जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं
0: हाँ
1: आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी किसी
1: जी
0: को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: और
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: मुझे
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी

0: बारे दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा दिलरुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार, हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर पे कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया है।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीज भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया, अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: मुझे
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी

सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार है, 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आइए सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
1: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी। जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हां, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी,

धराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सब की व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया ये सोचकर कि यह तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे।

कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे, आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था।

0: उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आज आपके साथ आपके अपने रेडियो दोस्त आरजे बरखा कश्यप, और स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में। दोस्तों, आज है मुहर्रम। मुहर्रम इस्लामी नववर्ष का पहला महीना है और इसका विशेष महत्व हजरत इमाम हुसैन तथा उनके साथियों की कुर्बानी से जुड़ा है। करबला की ऐतिहासिक घटना हमें सत्य, न्याय, साहस और मानवता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। मुहर्रम केवल शोक

पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज है मुहर्रम। मुहर्रम इस्लामी नववर्ष का पहला महीना है और इसका विशेष महत्व हजरत इमाम हुसैन तथा उनके साथियों की कुर्बानी से जुड़ा है। करबला की ऐतिहासिक घटना हमें सत्य, न्याय, साहस और मानवता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। मुहर्रम केवल शोक का अवसर नहीं बल्कि अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहने का संदेश भी देता है। आज के युवाओं के लिए यह पर्व त्याग, धैर्य और सामाजिक सद्भाव की भावना को समझने का अवसर है। आइए, मुहर्रम के अवसर पर हम अपने आपसी भाईचारे, शांति और मानवता के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लाल बर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: आज हम स्मरण कर रहे हैं महान समाज सुधारक, प्रगतिशील शासक और सामाजिक न्याय के अग्रदूत छत्रपति शाहू महाराज जी की जयंती का। 26 जून 1874 को जन्मे शाहू महाराज ने शिक्षा, समानता और सामाजिक उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक कार्य किए। उन्होंने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया। उन्हें भारत में सामाजिक न्याय और आरक्षण की अवधारणा के शुरुआती समर्थकों में गिना जाता है। शाहू महाराज का मानना था कि शिक्षा ही समाज में सकारात्मक बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनके विचार आज भी युवाओं को समानता, मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देते हैं। आइए उनकी जयंती पर हम सब शिक्षा, समरसता और सामाजिक न्याय के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: दोस्तों, हर वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। आज के समय में नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उसके परिवार, शिक्षा, करियर और पूरे समाज को प्रभावित करता है। कई युवा जिज्ञासा, दबाव या गलत संगति के कारण नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। युवाओं की शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए आवश्यक है कि हम स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, खेल, संगीत और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ें तथा नशे से दूर रहें। यदि आपके आसपास कोई व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा हो तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसे सही सलाह और सहायता दिलाने का प्रयास करें। आइए इस अवसर पर हम सभी नशा मुक्त भारत और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लें।

दोस्तों, हर वर्ष 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य यातना और अमानवीय व्यवहार का शिकार हुए लोगों के प्रति समर्थन और संवेदना व्यक्त करना है तथा मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

जाता है। यातना केवल शारीरिक कष्ट तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये किसी व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को भी गहराई से प्रभावित कर सकती है। दुनिया भर में अनेक लोग संघर्ष, हिंसा, भेदभाव और अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसे कष्टों को सामना करते हैं। इस दिन हमें याद रखना होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार मिले। युवाओं की भूमिका एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण है। हमें मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न या अमानवीय व्यवहार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज के डिजिटल युग में भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी भाषा, व्यवहार और सोच में मानवीय संवेदनाएं बनी रहें। एक छोटा सा सहयोग, एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और न्याय के पक्ष में उठाई गई आवाज किसी पीड़ित व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आइए इस अवसर पर हम एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लें जहां हर व्यक्ति को सम्मान मिले, मानवाधिकार सुरक्षित हो और मानवता सर्वोपरि हो।

तो दोस्तों, इसी के साथ और इस गीत के साथ आज का युवावाणी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज की प्रस्तुतियाँ और बातचीत और गीत आपको पसंद आई होंगी, आपके लिए कुछ नया लेकर आई होंगी। आप भी अपनी प्रतिभा, विचार और रचनात्मकता के साथ युवावाणी से जुड़ सकते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह और एक नई आवाज़ के साथ। तो अब मैं विदा लेती हूँ आपसे। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और इस गाने के साथ स्वीकार करिए अपनी रेडियो दोस्त आरजे बरखा का प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवावाणी, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप आनंद लीजिए फिल्म संगीत के एक कार्यक्रम का।

धीरे धीरे मचल। लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना कैफी आजमी के बोलों को, हेमंत कुमार का संगीत, और फिल्म का नाम था 1966 की फिल्म अनुपमा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं परदेश फिल्म का गीत

शफ़ाकत अमानत अली की आवाज़ में भी आपने सुना कभी अलविदा ना कहना, फिल्म का नगमा, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत। कार्यक्रम में अब बारी है अगले और आखिरी गीत की, जिसे हमने लिया है फिल्म 1942 लव स्टोरी से।

0: कुमार सानू की आवाज़ में भी आपने सुना 1942 अ लव स्टोरी का ये गीत, जावेद अख्तर के बोल, आर डी बर्मन का संगीत। इसी के साथ फिल्म संगीत का सफ़र समाप्त होता है। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका रेडियो दोस्त नितेश मिश्रा लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट आज की एक बेहद खास और दिल को छू लेने वाली शाम के साथ। आज की यह शाम समर्पित है एक ऐसे महान शख्सियत को जिन्होंने भारतीय सिनेमा में प्रेम परिवार और मानवीय संवेदनाओं की एक नई परिभाषा लिखी।

जी हाँ, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक यश जौहर जी को। श्रोताओं, 26 जून वर्ष 2004 को यश जौहर जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी बनाई फिल्में और उनकी सादगी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज उनकी पुण्यतिथि के इस विशेष अवसर पर हम अपने श्रोताओं और सभी सिनेमा प्रेमियों के लिए लेकर आए हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलू और उनके सदाबहार नगमे। तो चलिए, चाय की चुस्कियों के साथ सफर की शुरुआत करते हैं उनके एक बेहद प्यारे से गीत के साथ।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: एक बार फिर आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन और फिल्म निर्माता यश जौहर जी की। जी हाँ, फिल्मों के भव्य सेट और शानदार लोकेशंस के पीछे जिस व्यक्ति का दिमाग होता है, वो थे यश जौहर। जी हाँ, अमृतसर में जन्मे और पले बड़े यश जी का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने सुनील दत्त साहब के अजंता आर्ट से अपने करियर की शुरुआत की और देव आनंद साहब के साथ गाइड जैसी ऐतिहासिक फिल्म का निर्माण भी संभाला। एक फोटोग्राफर से लेकर हिंदी सिनेमा के दिग्गज प्रोड्यूसर बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक है। यह उनकी दूरदर्शिता ही थी कि 1976 में उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन शुरू किया और इस बैनर की पहली फिल्म थी दोस्ताना। 1980 में ये फिल्म आई थी। तो आइए श्रोताओं, क्यों ना उसी फिल्म का एक सदाबहार गीत जो आज भी लोगों की जुबान पर है, उसे हम सुन लेते हैं।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री और साथ ही पॉलिटेक्निक के साथ 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग में।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। श्रोताओं, यश जौहर की फिल्मों में हमेशा भारतीय संस्कृति, संस्कार और परिवार को सबसे ऊपर रखा गया है। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी बल्कि ये वो जीवन जीने का सलीका भी सिखाती थी। जी हाँ दोस्तों, यश जौहर न केवल एक बेहतरीन फिल्मकार थे बल्कि इंडस्ट्री में उन्हें एक अत्यंत नेक और दयालु इंसान माना जाता था। उनके बारे में अक्सर कहा जाता था, इन एन ऑफन डिसऑनरेबल बिजनेस ही वॉज एन ऑनरेबल मैन। जी हाँ, धोखाधड़ी से भरी इस दुनिया में वो एक बेहद ईमानदार इंसान थे। उन्होंने अग्निपथ 1990 जैसी लीक से हटकर फिल्में बनाई, कल हो ना हो 2003 में बनी फिल्में जैसे दिल को छू लेने वाली कहानियों को पर्दे पर उतारा हो। आइए उनकी याद में एक बेहद प्यारा गीत सुनते हैं जो आज भी सबकी जुबान पर होता है।

0: शॉपिंग।
1: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
2: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
3: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
1: आई नो ना।
3: आरबीआई कहता है,
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, इस्लामी कैलेंडर के अनुसार नए साल यानी हिजरी सन की शुरुआत हो चुकी है और मुहर्रम का मुकदस महीना चल रहा है। मुहर्रम का महीना हमें इतिहास की उस महान और बेमिसाल कुर्बानी को याद दिलाता है जो हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों ने करबला के मैदान में दी थी। यह महीना हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमेशा सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर अडिग रहना चाहिए। श्रोताओं, करबला का संदेश किसी एक मजहब के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। हमारे ज़िले बालाघाट में भी गंगा जमनी तहजीब की एक खूबसूरत मिसाल हमेशा देखने को मिलती है, जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर मुहर्रम के दौरान शांति, भाईचारे और सौहार्द का परिचय देते हैं। करबला की शहादत की याद में निकाला जाने वाला जुलूस आज देश भर में जगह जगह निकाला जा रहा है। इस मौके पर ताजिया की खूबसूरत सजावट की जाती है, जिसमें अलम भी लगाया जाता है। यह ताजिया बेहद ही दार्शनिक होता है। साथियों, मुहर्रम त्यौहार नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। चलिए श्रोताओं, अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक और गीत का।

0: इस गीत के साथ ही गुड इवनिंग बालाघाट कार्यक्रम समाप्त होता है। चलते चलते आपको बता दें, इस कार्यक्रम को लेकर आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त नितेश मिश्रा, प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। स्वीकार करें हम सबका नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनिए अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर हमारी खास रेडियो रिपोर्ट, आलेख और संकलन श्रीश पाठक का।
2: श्रोताओं, हमारा भारत देश विश्व की सूची में क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में 2रा स्थान रखता है, और जहां इतनी जनसंख्या हो वहां समस्याओं का होना स्वाभाविक है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है रोटी, कपड़ा और मकान। मेरे कहने का अर्थ आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे, और यदि नहीं समझे तो एक साफ सुथरी जिंदगी की आराम से गुजर बसर, यानी ठीक ठाक चलती जिंदगी। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जितने ज़्यादा हाथ उतनी ज़्यादा बरकत, यानि कहने का मतलब जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा आमदनी। इसी फिराक में हम आज के इस प्रतिस्पर्धा के युग में जहाँ जनसंख्या बढ़ाते हैं वहीं समस्याओं को उत्पन्न भी करते चले जाते हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है प्रतिभागियों की संख्या में बढ़ोतरी, जिससे आज का ये युग जहाँ हर क्षेत्र से जुड़े युवा आते हैं, वहीं कहीं हमारी एक कमी कहीं ना कहीं हमें दूसरों से पीछे छोड़ती चली जाती है।

जाती है, साथ ही मानसिक दबाव यानी डिप्रेशन भी पैदा कर देती है और हम इसे दूर करने का उपाय खोजने लगते हैं। कुछ हमारे दोस्त, हमारे मित्र या कुछ देखा देखी। हमारा आशय उन चीज़ों से है जो न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे घर परिवार को पीछे छोड़ती हुई चली जाती है। धीरे धीरे जिंदगी का सुकून चैन का सफर तकलीफदायक बन जाता है और बस एक बात याद रह जाती है, काश।

0: श्रोताओं, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं गली के किसी कोने में कोई ना कोई हमारे ध्यान को आकर्षित करता है। उसकी आदत हमें चिंतित करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नशे की लत की, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिल ही जाती है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि क्या उसकी ये उम्र सही है या क्या उसकी ये आदत सही है। नहीं, ये आदत सही नहीं है। हम ऐसा करने से उसे रोक सकते हैं। आज हमने इसी विषय को चुना है और हमने चर्चा शुरू की जनप्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और युवाओं से। चर्चा की सबसे पहले हमने शुरुआत की कुछ युवाओं से। आज युवाओं के कंधों पर जवाबदारी अहम मानी जाती है। देश का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है देश का हर युवा। उनके विचार क्या कहते हैं, आइए जानते हैं।
1: मैं दिनेश रामडाले। नशा एक सामाजिक बुराई है। सामाजिक बुराई तो है ही, साथ नशा करने से व्यक्ति का परिवार बर्बाद हो जाता है, आर्थिक तंगी का सामना करने पड़ता है नशा करने से, और नशा करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से तो अक्षम हो ही जाता है, साथ में उसके परिवार के सारे सदस्य उसके नशे करने की प्रवृत्ति से बेहद प्रभावित होते हैं। इसके चलते परिवार में बच्चों का किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाता है, और इसीलिए नशा को किन्हीं भी हालात में, किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे मनुष्य को कितनी भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े, नशे को कभी सही नहीं ठहराया जा सकता है। कुछ लोग नशा करने के कारणों में ये कहते हैं कि पारिवारिक कारण और आर्थिक तंगी और भी बहुत सी समस्याओं को लेकर लोग कहते हैं कि हमें इसलिए नशा करना पड़ रहा है, लेकिन नशा किसी भी प्रकार से नशा करना को जायज नहीं ठहराया जा सकता है।
2: अंकित बोथरा, युवा होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नशे से लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, जैसे तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, इन सब चीज़ों से कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ हो रही है, दारू से टीवी, फेफड़ों का गलना और पूरी ज़िंदगी ख़त्म होना, यहाँ तक कि ऐसा कुछ हो रहा है। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट और दारू का, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें, इससे आपकी ज़िंदगी और सुरक्षित रहेगी, आपका परिवार खुश रहेगा।
3: दुर्गा प्रसाद खरोले। नशा एवं मादक पदार्थ जो है, जिनके सेवन करने से हम लोग और हमारा पूरा समाज जो है बहुत क्षति में जाता है। नशीले पदार्थ का सेवन करने से धीरे धीरे नशीले पदार्थ जो है इनकी चाहत बढ़ने लग जाती है, और व्यक्ति इनकी मात्रा को शुरुआत करने के बाद में इसके इतने आदि हो जाते हैं कि आने वाले समय के लिए सारी सूझबूझ भी खो देते हैं, बाद में बहुत गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं, और व्यक्ति शारीरिक, मानसिक एवं सभी जो क्षमताओं को है खोने लगता है। धीरे धीरे इसका असर इतना बुरा होने लगता है कि नशे की आदत बढ़ने के साथ साथ ही शरीर पर जो अंग होते हैं शरीर के अंदर में, मादक पदार्थों का सेवन करने से जब तक हमारी प्रतिरोधक क्षमता रहती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे कैंसर का रूप ले सकती है, या किडनी खराब हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, फेफड़े में खराबी हो सकती है, टीबी के शिकार भी हो सकते हैं, और भी अन्य घातक रूप के परिणाम हमको भुगतने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, जो भी इंसान नशा करता है तो नशा करने वाला इंसान, चाहे नशा किसी भी रूप में हो, या तो शराब के रूप में हो, या मादक पदार्थ चबाने वाले पदार्थ हो, या धूम्रपान वाले पदार्थ हो जिनसे धुआं निकलता है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, इन सभी चीज़ों का या इनमें से किसी भी एक चीज़ों का जो व्यक्ति सेवन करता है, जो इंसान सेवन करता है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसका जो विकास है वो अवरुद्ध होता है। यह हमारा प्रैक्टिकल भी है, हमने देखा भी है, और आप लोग भी इससे गौर से यदि चिंतन करें तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आ जाएगा। तो ये मान लीजिए आप कि आपने जितने का नशा किया है उतना पैसा आपका या धन

0: जो है वो बर्बाद हो गया। अब धन बर्बाद होने के बाद में आपका शरीर भी बर्बाद होने लगा, और उस बर्बाद हुए शरीर को तो उसको ठीक करने के लिए फिर आपको या तो लाखों रुपए खर्च करना पड़ सकता है या जीवन को छोड़ देना पड़ता है।
1: मैं उपेंद्र सहारे युवा होने के नाते सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि नशा करना एक बुरी बात है। नशा हमारे परिवार हमारे शरीर को भी नुकसान पहुँचाता है। मैं यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि शराब का सेवन और बीड़ी सिगरेट का सेवन ना करें।
2: मैं चंद्रदीप साहू। आज हमारे समाज में मद एक बहुत बड़ा अभिशाप बन के उभर रहा है। इस सब में हम सबकी भागीदारी है कि हम सब लोग ना ही मदिरा पान करें और ना ही किसी को करने दें। ये समाज परिवार और देश के लिए घातक है। मदिरा पान जो लोग भी करते हैं, एक तो अपने आर्थिक नुकसान भी करते हैं, साथ में परिवार में अशांति पैदा करते हैं और समाज को एक बुराई के रूप में समाज का निर्माण करते हैं, और जो कि हमारे देश के अच्छे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मदिरा का कोई ना सेवन करें, और आज मध्य दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोग संकल्पित हों कि ना ही हम खुद मदिरा पान करेंगे, ना ही औरों को करने देंगे, और जो समाज में यह जो कुरीतियाँ फैली हुई है, या जिसे कहें हम लोगों ने आजकल इसे अपना फैशन बना लिया है, इसे हमें दूर करना है। इसके बुरे परिणामों के बारे में लोगों को अवगत कराना हम प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।
3: जनप्रतिनिधि इस विषय को लेकर क्या कहते हैं? क्या वो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? हमने चर्चा की श्री रमेश रंगलानी से।
4: देखिए, जहाँ तक मद्य पीने वाले की बात है, तो मद्य पीने वाले का जो व्यवहार होता है, एक तो घर के प्रति उसकी जवाबदारियाँ वो समझ ही नहीं पाता है। जब घर पर पहुँचता है और शराब के नशे में होता है, न किसी प्रकार की सोच उसकी रहती है। और होता ये है, न घर में क्या आवश्यकताएँ हैं या किसी प्रकार की ज़रूरत है, या मेरा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में है, ये सब भूल जाता है। और शराब के नशे में कई बार देखा ये जाता है कि अपने बच्चों के साथ में उल जलूल व्यवहार करता है, और जो उसका जो सामाजिक और पारिवारिक उसकी बंधन है या जवाबदारी है, पारिवारिक जवाबदारी को भी भूल जाता है, और वो न परिवार उसका आगे बढ़ पाता है, और अंततः वो परिवार अवनति की ओर पड़ जाता है। स्वयं तो जाता ही जाता है, लेकिन परिवार भी उसका आगे नहीं बढ़ पाता। इससे अच्छा है कि मध्य निषेध का जो आपने किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है, और जनता के बीच में, परिवारों के बीच में इसकी जागरूकता, इसका प्रचार होना चाहिए। और मैं तो यही निवेदन करूँगा सबसे कि जहाँ तक हो शराब से दूर रहें, क्योंकि शराब पीने वालों के परिवारों को मैंने देखा है, और उनका जो हाल रहता है वो बेचारे बड़ी उसकी गिरती हुई हालत में जीवन यापन करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते।
5: जैसे कि अभी युवाओं को देखा जाता है कि अक्सर जो युवा होते हैं कुछ डिप्रेशन में होते हैं वो, और शराब का या धूम्रपान का सहारा वो लेते हैं। स्कूलों के आसपास जो पान की दुकानें होती हैं, इसके लिए आपके क्या संदेश हैं कि किस प्रकार से?
4: हाँ, ये बात विश्वविद्यालय है, उसके सामने दुकानें कई लगी पान भी की, सिगरेट की, इसकी। वहाँ के जो लड़के हैं वो वहाँ धूम्रपान करते हैं, पान खाते हैं, गुटके और ये इस प्रकार की नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, और वहीं से फिर उनके जो हरकतें भी होती हैं, क्योंकि लड़कियाँ ही पढ़ती हैं, लड़के ही पढ़ते हैं, वो अच्छी नहीं थी। वहाँ कम से कम इससे निजात तो मिली है, अच्छा लगा है, थोड़ा जनता को भी अच्छा लगा है।
3: विशेषज्ञ क्या कहते हैं? आप हैं डॉक्टर श्रीमती अर्चना गुप्ता।
6: देखिए, जो मद्यपान की शुरुआत होती है वो सबसे पहले फैमिली, आपकी फैमिली कैसी है, आपके फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर फैमिली में, उसके फैमिली में एक या दूसरे दो मेंबर अगर ड्रिंक है, बच्चा है शुरू से देखता जा रहा है, यह हैबिचुअल हो जाता है, या बाहर वो बुरी संगतों में पड़ता है। आजकल एक फैशन हो गया है स्मोकिंग, ड्रिंक करना, बच्चे क्लब पार्टी सब चीज़ों में, तो एक ही फैशन भी हो गया है। तो एक बच्चा फिर वहाँ से एडिक्ट होने लगता है, धीरे धीरे वो वीकली पी रहा है, मंथली पी रहा है, फिर उसको उसकी बॉडी को ही रिक्वायरमेंट

0: डेली पीने लगता है फिर वो, तो वो फिर एक एडिक्शन हो जाता है।
1: बाद में उसे किस प्रकार की तकलीफें देखने में आती हैं सर?
0: देखिए, ड्रिंक करने से तो वैसे तो हमारी पूरी होल बॉडी में ही प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ कि पहले तो आपका लीवर है ना, लीवर में हमारा अल्कोहलिक हो जाता है, मतलब लीवर हमारा फेल्योर होने लगता है। और स्मोकिंग के बारे में, स्मोकिंग से जैसे हमें लंग्स इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, जिस हिसाब से हमारे देश में शायद 60 या 70% लोग हैं जो पुअर पेशेंट हैं। और जैसे कि हमारे देश में लीवर ट्रांसप्लांट तो हो जाता है पर लंग्स वगैरह ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं। लीवर का जो ट्रांसप्लांट है वो भी आज 20 से 22 लाख है जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इस टाइप से ये लंग्स हैं, लीवर हैं, बाकी होल बॉडी में ही प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जिसका फिर उपचार ना होने के कारण पेशेंट जो 70 साल तक जीवित रहना चाहता है वो 50 से 40 साल की उम्र पे।
1: मैडम, डॉक्टर होने के नाते आप ऐसे मरीज से जो जो वो करता है उसे छोड़ना चाहता है, तो किस प्रकार के प्रकार का संदेश आप उन्हें देना चाहेंगे?
0: सबसे पहले तो मैं बालाघाट के गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जो हमारे पेशेंट यहाँ पे एडिक्ट हैं ड्रिंक और ये सब चीज़ों से, तो इस टाइप की ये निकेतन बनानी चाहिए हमारे बालाघाट में कि जो ऐसे पेशेंट जो 10 साल से 15 साल से पी रहे हैं तो वो यहाँ आके उनको ऐसी सुविधाएं मिलनी चाहिए कि ये छोड़ना चाहे धीरे धीरे, क्योंकि ये पेशेंट की बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाती है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और सेकेंड थिंग, पेशेंट से भी अगर सबसे पहले बोलते हैं दृढ़ शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर पेशेंट या जो भी पीने वाला व्यक्ति है वो अगर अपने मन में दृढ़ संकल्प कर ले कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, तो फिर इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं बालाघाट वासियों से ये कहना चाहूँगी कि जो नहीं पीना पी रहे हैं वो ना पिए, जो पी रहे हैं उनको भी मना करें, क्योंकि इनसे घर परिवार बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम।
2: अच्छा, एक ऐसा अभिशाप है जो समाज में लग चुका है, और प्रथमतः हम ये देखते हैं कि आज के समय में हमारे जो युवा होते हैं, हमारे जो बाल्यकाल से निकलकर युवा अवस्था में पहुंच रहे लोग होते हैं, वो अधिकतर नशे का सेवन करना शुरू कर देते हैं, और एक लंबे अरसे तक जब वो नशे से पीड़ित हो जाते हैं, नशे से आदि हो जाते हैं, तो उनका निकल पाना बहुत मुश्किल होता है कि उस नशे के क्षेत्र से या उस नशे की आदत से वो बाहर निकल सकें। तो आज समाज में ऐसे कुछ लोग भी उपलब्ध हैं या ऐसे कुछ लोग भी हैं जो उन्हें इन अवस्थाओं से बाहर निकालने में बहुत सहयोग करते हैं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह चलाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं। तो आइए इस विषय पर हम बात करते हैं श्री अंकित एड़े जी से, और जानते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र किस प्रकार से उन्हें सहयोग करता है नशे के क्षेत्र से या नशे की लत से बाहर निकालने के लिए। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो नशा मुक्ति केंद्र में अक्सर यहाँ पहुँचते हैं।
3: नमस्कार, मेरा नाम अंकित एड़े है। जो अत्यधिक नशे के आदि हो जाते हैं, जो लंबे समय तक से नशा करते रहते हैं, और परिवार इनको कई बार बोल चुका होता है, डॉक्टर इनको बोल चुके होते हैं कि अब अगर आपने नशा करे तो आपके जीवन के लिए खतरा है, आपके शरीर के लिए खतरा है, तो ये उसके बाद में भी अपनी परिवार की बातों को इग्नोर करते हुए, अपने डॉक्टर की बातों को इग्नोर करते हुए तब भी ये नशा करते रहते हैं लगातार। ऐसे व्यक्तियों को हमारे सेंटर के बारे में जब पता चलता है कि ऐसे रिहेबिलिटी सेंटर चलते हैं, तो ऐसे सेंटरों का संपर्क करके परिवार हमारे पास आता है और उनको भर्ती कराता है। तो भर्ती करने के बाद, उन्हें भर्ती कर देने के बाद जो होता है हमारे पास में उनका रूटीन चेकअप होता है, डॉक्टरों के द्वारा उनका वो ध्यान रखा जाता है, फिर सेंटर में उनको योग, प्राणायाम, ध्यान और काउंसलिंग के माध्यम से ब्रेन वॉश करके उनको नशे से मुक्ति दिलाने के में सहयोग करता है करती संस्था।
2: जो व्यक्ति अत्यधिक शराब का या नशे का आदि हो चुका है, तो वो ये जो नशा मुक्ति केंद्र है इसमें सबसे पहले तो वो आने के लिए अपनी रोक लगाता है या उसका शरीर जो है उसे गवाही नहीं देता कि वो नशा मुक्ति केंद्र में पहुँचे। और अगर ऐसे व्यक्ति जो नशा उनके परिवार वाले उनसे छुड़वाना चाहते हैं और वो व्यक्ति नहीं आना चाहता, तो किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं उसके लिए? क्या ये सुविधाएं आप उसे घर में ही मुहैया कराते हैं या अपने नशा मुक्ति केंद्र में उन्हें किसी अन्य माध्यम से लाने की कोशिश करते हैं?
3: हम

0: पीड़ित व्यक्ति होता है, जो नशे से ग्रसित व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं नशा करता हूँ या बहुत ज़्यादा मैं नशा का आदि हो चुका हूँ। वह भर्ती होने के लिए भी अपने आप को तैयार नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में परिवार अपना कुछ जोर लगा के हमसे संपर्क करता है, हमारे द्वारा हमारे लड़के जाते हैं, हमारा वाहन जाता है और उनको प्यार से वहाँ से अपने घर से उठा के सेंटर लाया जाता है। और जब उनको समझाया जाता है कि भैया आपको तत्काल अभी उपचार की ज़रूरत है, तब जाके वो मानता है और वो उपचार के लिए तैयार होता है और कुछ दिन रहकर अपना इलाज करवाते हैं। और निश्चित तौर पे वो महीने, दो महीने, तीन महीने रहकर जब तक इलाज करवाते हैं, तब तक उनका शारीरिक और मानसिक अच्छा बदलाव आता है और बहुत बढ़िया बदलाव देखा है हमने अभी तक सेंटर के माध्यम से।
1: ये प्राथमिक अवस्थाओं की यदि हम बात करें, या गंभीर जो कुपोषित हो चुके हैं या गंभीर अवस्था में जो पहुँच चुके हैं, तो क्या उनके लिए कोई अलग अलग समय या कोई अलग अलग दिन होते हैं कि इन दिनों में उसे वापस लाया जा सकता है, नशा से छुड़वाया जा सकता है?
0: जैसे कि हम बात करें कि अगर उसकी स्थिति ज़्यादा ही डाउन हो चुकी, तो सबसे पहले उनको डॉक्टर के हिसाब से उनको अस्पताल में भर्ती करके उनको ग्लूकोज वगैरह या जैसे भी प्राथमिक ट्रीटमेंट अगर डॉक्टर साइकोटिक्स के माध्यम से जो दिया जाता है, तो सबसे पहले वो डॉक्टर ट्रीटमेंट करे और उनको कुछ हद तक रिकवरी करे। जैसे कई बार कई को चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं, तो डॉक्टर पहले अस्पतालों में भर्ती करके परिवारों के माध्यम से उनको, फिर उसके बाद में सेंटर में भर्ती किया जाता है और उनको यहाँ पे काउंसलिंग किया जाता है। नशा मुक्ति का मेन उद्देश्य और मेन जो कहना चाहिए हमारा कि ट्रीटमेंट का हिस्सा जो है वो काउंसलिंग है, ब्रेन वॉश, कुल मिला के उसके ब्रेन को वॉश किया जाए, उसे बताया जाए कि नशा करने से बीमारियों का आगमन होता है, नशा करने से परिवार से हमारे दूरियाँ बनती है, समाज से दूरियाँ बनती है, रिश्तेदारों से दूरियाँ बनती है, शरीर हमारा खराब होता है, ऐसे कई सारी चीज़ों के माध्यम से हम उनको ब्रेन वॉश किया जाता है हमारे माध्यम से।
1: एक व्यक्ति को सामान्य स्थिति में आने के लिए कितना समय लग सकता है?
0: 90 दिन तो लगभग लगता है, जो अत्यधिक नशा करने का जो आदि हो चुका है, जो उसको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो रखे, यानी हम लगभग 30 दिन से 90 दिन तो रखे, जिससे वो काफ़ी हद तक अपना लीवर डैमेज हुआ जो लीवर है वो अपने रिकवरी कर पाए।
1: कितने दिनों का जैसे ये जो कोर्स होता है, ये कितने दिनों तक चलता है?
0: ये हम 90 दिनों तक ही उनको रखते हैं और 90 दिनों तक वो रहकर अपना ट्रीटमेंट अगर कराते हैं तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक उनपे सुधार आ जाता है।
1: जी, शुरुआती दौर की यदि हम बात करें तो किस प्रकार से शुरुआत होती है इस उपचार की?
0: उस उपचार की पहले तो प्राथमिक दिन में उनको पहले तो विड्रॉल्स आने के चांसेस होते हैं, थरथराहट, घबराहट, बेचैनी, ऐसे कई प्रकार की सिम्टम्स हमने देखा है। कई बार वो अपने आप में ध्यान नहीं रखना, अपनी बातों को फोकस नहीं कर पाना, यानी उनको बेचैनी सी होती है। अगर वो निश्चित तौर पे अगर उस डेट में बाहर रहते तो वो नशे को डबल से नशे का सेवन कर सकते थे, और अगर सेंटर में बंद अगर हो गए हैं, सेंटर में अगर आ गए हैं उपचार के लिए, तो उनको घबराहट होना निश्चित है। उनको 2-3 दिन BP बढ़ेगा, उनको 2-3 दिन घबराहट होगी, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं।
1: देखा जाता है कि अक्सर जो लोग होते हैं, कभी अपने घर परिवार के छोटे बच्चों से भी, जैसे बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, या इस टाइप की चीज़ों को, तंबाकू जैसी चीज़ें जो होती हैं, इसको उनके हाथों से बुलवाते हैं, और धीरे धीरे वो बच्चा शौकवश या किसी और अन्य अवस्था को देखते हुए या अपने साथी के साथ मिलकर इन अवस्थाओं में पहुंचने लगता है धीरे धीरे। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे लोगों को?
0: मैं बताऊँगा कि यही शुरुआत है, बच्चों की यही शुरुआत है। हम सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि बच्चों के माध्यम से इन मादक पदार्थों का जो हम लोग क्रय करवाते हैं, मतलब कहीं से खरीदारी करवाते हैं, बच्चा जो होता है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती है कि चीज़ इतनी अच्छी है या इतनी अच्छी बेकार है तो हम पीते क्यों हैं, अगर अच्छी है तो हमारे घर वाले इसको पीते क्यों, क्यों ना हम इसका उपयोग करके हम भी देखें। और शुरुआत में अगर किसी ने उसको पिया, क्योंकि इन सब पदार्थों में एक ऐसा होता है कि एक दो बार अगर इसको उपयोग करने के बाद में इसको बार बार लेने की इच्छा जागृत होती है, और निश्चित तौर पर जब बार बार लेंगे तो हम इसके आदि हो जाते हैं और इसकी हमको एक दिन आदत पड़ जाती है। और हमें कई लोग बोलते भी हैं कि इसका आप आदि होते जा रहे हैं, तो मैं डेली थोड़ी ना पीता हूँ, या मैं उन जो रोड में गिरे रहते हैं उनके ऐसे गिरा थोड़ी ना रहता हूँ, इस टाइप की बात वो एक नशे से पीड़ित व्यक्ति आमजनों से करता है या परिवार से करता है।
1: देखा जाता है कि युवा अवस्था जब होती है तो परीक्षाओं का दौर होता है, या परीक्षाओं के बाद के परीक्षा फल का जो दौर होता है, उस समय भी व्यक्ति जो होते हैं या जो हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे और बड़े जो होते हैं, युवा जो होते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू होते हैं, और उसके माध्यम से ही वो डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने अन्य सहयोगियों के माध्यम से या अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर नशे का लत जो होती है उसको अपनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे युवाओं से

0: तो आप क्या संदेश उन्हें देना
1: मैं
0: चाहेंगे?
1: बताना चाहूँगा कि डिप्रेशन और चिंता सभी के जीवन में जुड़ी हुई है, सभी के साथ में चिंताएं जुड़ी हुई है, सभी के आम जीवन में ये सब चीज़ें होना तय है। जो एक वर्क के माध्यम से जो दिमाग में जो टेंशन पड़ता है, इसे जरूर नहीं कि उसको हम नशा के माध्यम से ही हम उसको दिमाग को शांत करें या नशा करने के बाद ही हम उसको भुला पाएं, जरूरी बिल्कुल नहीं है। नशा एक बहुत जहर है, बहुत बड़ा जहर है और हमारे लिए वो आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। हमने देखा है कि कई बार नशा में करते करते युवा इस हद तक चल जाता है कि अपने जीवन को तक नहीं बचा पाता और अपनी पुरानी बातों को याद करते करते वो नशा करता है और एक दिन एक ऐसा आ जाता है कि उसके पास में पाने के लिए या अचीव करने के लिए कुछ रहता नहीं, उस चिंता के कारण भी वो नशा लगातार करते रहता है।
2: कोई व्यक्ति जब नशा करता है तो नशे की शुरुआत की हम बात करें तो ये किस प्रकार से शुरुआत उसकी आपने देखी है कि होती है?
1: देखिए, जन्म से बच्चा कभी शराब या किसी ऐसे नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करता है। हमने देखा है कि कभी कभी नशा जो है कोई पड़ोसी करता है या उसका दोस्त करता है। WHO की रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चला है कि 90-95% ऐसे केस जो होते हैं जिनके नशा करवाने वाला कोई अपना ही होता है, जैसे दोस्त या भाई। पहली बार जो नशा करने वाले होता है वो दोस्त ही अपने साथ में नशा करके लेके आता है, जैसे नशा में शराब हो गया या गुटखा तंबाकू हो गया, बोलता है कि चलो आज कुछ अलग करते हैं, तो बीड़ी हो गया, तो वो अलग करते हैं के माध्यम से जैसे उसने शुरुआत करी। तो ये शुरुआत में क्या लगता है कि हम लोग नशे की आदत थोड़ी ना हो जाएंगे एक बार करने से, जब वो इसको लगातार करने लगते हैं, जब लगातार करने लगते हैं तो वो एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसके बगैर वो रह ही नहीं सकते। और जब शुरू में जितना नशा इनने किए हो उतना नशा इनको करने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें उनको उतना वो आनंद नहीं आता जो आनंद उनको पहली बार करने में आया था। अब ये उस नशा को, वो आनंद प्राप्त करने के लिए उस नशे की मात्रा को इन लोग बढ़ाते हैं, जैसे ही बढ़ता है तो वो आदी हो जाते हैं और एक आदी होने के बाद में आपने देखा होगा कि कई बार वो नशा करने के बाद में काम करते हैं, नशा करने के बाद में गाड़ियां चलाते हैं, नशा करने के बाद परिवार में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि घरेलू हिंसा जो होती है अपने भारत में 80% कारण जो है नशा है। रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके 50% कारण नशा है। हमने देखा कि मानसिक रोग बढ़ रहे हैं उसके पीछे 50% कारण नशा है। आत्महत्याएं उसके पीछे 60-70% कारण नशा है। कि व्यक्ति इतना बड़ा फैसला जो होता है शरीर जिंदगी के साथ में वो नशे में ही ले सकता है। तो ये WHO की रिपोर्ट के माध्यम से हमें पता चला है और 2019 में भारत में पहली बार सर्वे हुआ है जिसके माध्यम से हमें आज पता चला है। 140 करोड़ जनसंख्या में 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नशा किसी न किसी नशे के आदि हैं, जिसमें 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो शराब के आदि हैं, 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार के नशे मतलब अन्य नशा ले रहे हैं, जिसमें 7.5 करोड़ लोग आदि हो चुके हैं। 7.5 करोड़ लोग में 5.5 करोड़ लोग शराब के हैं, 90 लाख लोग इंजेक्शन और 1 करोड़ लोग अन्य ड्रग्स के आदि हो चुके हैं, जिसमें 6 करोड़ लोगों से का कहना है कि हम लोग नशा छोड़ना चाहते हैं पर हमसे नशा बिल्कुल नहीं छूट रहा है, हम उसके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकते, नशा नहीं करेंगे तो हम मृत्यु हो जाएगी। और ये सही बात है, नशा करने से मृत्यु होती है तो सुनी है, पर नशा नहीं करने से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अचानक किसी उसको हमको छोड़ देना हमारे लिए मौत का कारण बन सकता है, ऐसा रिपोर्ट में माध्यम से हमको पता चला है।
2: धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। निश्चित ही आपकी बातें जो हैं हमारे श्रोता जो हैं वो सुन रहे होंगे और आने वाले समय में ऐसी जो लतें होती हैं उनसे दूर करने की, अपने परिवार को और अपने आप को दूर करने की पूरी कोशिश वो करेंगे, क्योंकि जीवन जो है वो बहुमूल्य होता है और वो जीवन जो आपको मिला है वो आपके घर परिवार की ही देन है और घर परिवार के लिए ही बना हुआ है। तो कृपया कर अपने इन आदतों को छोड़ें और अपने अच्छे जीवन को जीने का पूरा प्रयास करें।
3: जहन में इसी सवाल को लिए हम आगे बढ़े। चर्चा हमने की
2: डिंडोरी जिला में पदस्थ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से।
4: कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोगों का मुंह खुल नहीं पाता, ये स्थिति म्यूकोसल फाइब्रोसिस कहलाती है और ये अवस्था जो है मुंह नहीं खुल पाने के कारण व्यक्ति ढंग से खाना पीना नहीं खा पाता और वो कुपोषण का शिकार होकर के विभिन्न बीमारियों का शिकार हो सकता है। गालों में एक प्रकार के सफ़ेद रंग का धब्बा हो सकता है जिसको लीकोप्लीकिया बोलते हैं। ये अवस्था जो होती है बाद में कैंसर में तब्दील हो सकती है। इसके साथ साथ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि जीभ मुंह

0: और आहार नाल, इन सब के कैंसर भी तंबाकू के खाने से होते हैं। तंबाकू के खाने के कारण इस प्रकार के कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसके साथ ही साथ फेफड़े के कैंसर में भी तंबाकू का रोल है, जो कि सिगरेट के माध्यम से हम लेते हैं। अगर हम सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो फेफड़े के कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके अलावा आँखों में भी तंबाकू, चूँकि रक्तचाप बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर के कारण व्यक्ति को लकवे की शिकायत हो सकती है, व्यक्ति को हृदय के बढ़ने की शिकायत हो सकती है, व्यक्ति की चलते समय सांस फूल सकती है, व्यक्ति को दमा की शिकायत भी तंबाकू के कारण हो सकती है। क्या होता है, जब व्यक्ति का परिवार का कमाने वाला सदस्य, परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ता है, तो निश्चित रूप से उसके परिवार के ऊपर भी असर पड़ता है, उसके परिवार के सदस्य प्रभावित होते हैं। और अगर घर में कमाऊ है और नौकरी में नहीं जा पा रहा है, दिहाड़ी मजदूर है, काम नहीं कर पा रहा है, और ऐसे लोग ज़्यादा खाते हैं, मैं देखता हूँ कि दिन भर गुटखा रखे रहते हैं लोग और गुटखा खाते रहते हैं समय समय पर, तो इन लोगों से सबसे मेरा निवेदन है, सबसे मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस बुरी लत से मुक्ति पाएं, इसको छोड़ें। आपको लगेगा जरूर 4 दिन 8 दिन 10 दिन जरूर दिक्कत होगी, इसके जगह में आप कुछ चॉकलेट वगैरह खा सकते हैं, कुछ मीठी गोली खा सकते हैं जब इसकी लत होती है, लेकिन छोड़ें। और निश्चित रूप से आपको दृढ़ इच्छा शक्ति ही आपको छुड़वा सकती है, कोई मैं या दूसरा आदमी आपको नहीं छुड़वाएगा, आप अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से स्वयं इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि इसके माध्यम से जो लोग इसे सुन रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपने को इससे मुक्त करने का।
1: क्या कभी हम ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत? ये सोचने का विषय है हमारे लिए कि क्या हमारी ये लत हमारे परिवार को सुकून दे पाएगी या तकलीफ। यही तो सोच का विषय है, या हम बातों को आगे सोचें और आज से ही इसे छोड़ दें और सोचें कि हम में क्या कमी है और वो कैसे होगी पूरी। तो अब हम इसके लिए प्रयासरत हैं, क्या आप भी तैयार हैं? बस जरूरत है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की, इच्छा शक्ति को मजबूत करने की और मन में विश्वास जगाने की। बस सफलता हमारी होगी। बस बुरी आदतों को छोड़ें और आज से ही अपनी जिंदगी को सफल और खुशनुमा बनाएं। बस मन में ये ठान लें कि आज से ही इस बुराई को हम दूर करके रहेंगे और इस पे विजय पाएंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर रेडियो रिपोर्ट। आलेख और संकलन था शिरीष पाठक का, प्रस्तुति थी कुंवर विक्रम सिंह की। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का। शाम के 7 बजे हैं। अब आप जानिए हमारी कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। प्रादेशिक समाचारों का वक्त होगा शाम 7:10 पर।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद आप लीजिएगा शाम 7:21 पर। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। एक बार फिर फिल्म संगीत के कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा रात 8 बजे से रात 8:30 तक।

रात 9 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और रात 9:15 पर स्पॉटलाइट समाचार। ये समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और रात 9:30 से रात 10:30 तक आप आनंद लीजिएगा विविध भारतीय प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का। रात 11 बजे होंगे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

आई श्रोताओं, अब हम आपको दे दें जानकारी हमारी कल की सभा के कुछ कार्यक्रमों की। सभा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह 6:30 का समय होगा कार्यक्रम चिंतन का, और 6:35 से 6:45 तक आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का लुत्फ उठाइएगा सुबह 6:50 पर। सुबह 7:10 पर होंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट हम लेकर हाजिर होंगे सुबह 7:20 पर।

समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:05 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। कृपया करें थोड़ा सा इंतज़ार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशेल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे

0: सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसाबंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
3: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में 2 दिन निशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में

जल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबड़ला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप आनंद लीजिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गीतकार शैलेंद्र के बोलों के साथ, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने, संगीतकार सलील चौधरी और फिल्म का नाम है परख।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना परख फिल्म का गीत, सलील चौधरी का संगीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म नमकीन से। जी हाँ, गीतकार गुलजार, संगीतकार राहुल देव बर्मन और गायक स्वर आशा भोसले का। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

आइए अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम के आखिरी गीत को सुनने का, जिसे हमने लिया है फिल्म बरसात की रात से। आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना बरसात की रात फिल्म का ये नगमा, संगीत था रोशन का। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफ़र समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनिए आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम सभा।
1: पूनम सरावगी को भैया सुनाते हैं।
2: मैं वैसे तो सभी के लिए योग काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन महिलाओं की बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याओं और मेनोपॉज के दौरान यदि योग किया जाए तो उसको सुगम बनाया जा सकता है। इसी विषय को लेकर हमने बात की है योगा एक्सपर्ट्स, गायनेकोलॉजिस्ट और लाभार्थियों से, जिन्होंने हमसे अपने विचार साझा किए। योग गुरु एकता जाधव ने हमें बताया कि किस तरह से बढ़ती उम्र में मेनोपॉज के दौरान महिलाएं योग करके खुद को स्वस्थ रख सकती हैं।
3: हेल्दी एजिंग का मीन्स है कि आपकी बॉडी हर एज में फ्लेक्सिबल हो, मोबाइल हो, वो उठने बैठने के लायक हो, एक्टिव हो, आपको कोई काम करना बर्डन ना लगे, आप हैप्पीनेस के साथ पीसफुली रिलैक्स्ड रहते हुए उस चीज को कर सको। तो यदि आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलती रहती हैं। आप इतने हैप्पी और हेल्दी होते हो, फुली फिजिकली भी और मेंटली भी, तो एजिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। एज आपके चेहरे से भी दिखती है, एज तो आएगी लेकिन आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो आता है योगा करने से, बिकॉज आपका पूरा सिस्टम बहुत क्लीन होता है, पूरा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा होता है, एक एक पार्ट, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्ट्रांग होता है, बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी होती है और वो रिफ्लेक्ट होती है आपके फेस पर। देखिए, सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि मेनोपॉज के टाइम हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, तो हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं। योगा करने से हम अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं काफी हद तक, कार्टिसोल का जो प्रोडक्शन है उसको काफी कम कर सकते हैं, सेरोटोनिन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, तो उसके थ्रू हम काम रह सकते हैं, रिलैक्स रह सकते हैं, मूड स्विंग्स जो हो रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, हमारा डाइजेशन हम बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज मेनोपॉज के टाइम जो बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ जाती हैं तो हम उसके लिए सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू करते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर रही होती है। तो यदि हम अच्छे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और अच्छा हम योग कर रहे हैं, हमारा डाइजेशन अच्छा है, तो वो सारी चीजें बॉडी में अब्सॉर्ब होती हैं और आपको वो समय बहुत इजीली चला जाता है। जैसे जैसे आप एज करेंगे, आपकी बॉडी यदि आपके हाथ में है, आपके कंट्रोल में है, आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, तो आपको एंग्जाइटी और हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, तो आप हेल्दी एज करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, तो वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एजिंग में हेल्प करेंगी, डिसीजेस नहीं होंगी। ऐसे सभी आसना जो आपके पेल्विक फ्लोर को काफी स्ट्रॉन्ग करें, ब्लड फ्लो को बढ़ाएं आपके पेल्विक फ्लोर में, वो काफी इफेक्टिव होते हैं। पेल्विक फ्लोर आपका जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, और दूसरी चीज ब्रीदिंग आप जितना ज्यादा करेंगे वो सबसे इफेक्टिव है। यदि आप आसनास नहीं भी कर पा रहे हैं, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वो काफी इफेक्टिव है, आपको मेंटली उस पीरियड को कट करने के लिए, उसको पास करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। फूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट।

0: होता है आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना, रिच इन आयरन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका के फूड में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी होता है। तो सीड्स का खाना बहुत जरूरी होता है, प्रोटीन रिच इन फाइबर, फाइबर रिच फूड खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
1: योग करने से लाभ प्राप्त कर रही लाभार्थी महिलाओं ने हमसे अपने विचार साझा किए। योग से लाभ ले रही किरण पाठक बताती हैं।
2: मैं 63 ईयर ओल्ड हूँ।
1: जी
2: मैं पूरी लाइफ बाहर कभी नहीं निकली, गृहस्थी में व्यस्त रही, लेकिन 60 क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ योगा आ रही हूँ और मुझे बहुत फायदा है। बहुत घुटनों में, बॉडी में, सब में मुझे बहुत रिलैक्स है। तब मुझे अब समझ में आया इस उम्र में कि योगा से सब होगा। घुटनों में प्रॉब्लम थी, चलने में सांस फूलना, अभी कुछ नहीं है। वेट भी बहुत लॉस हुआ है, करीबन 6-7 किलो। बहुत बेनिफिट है, मेंटल बहुत रिलैक्स है। हाँ, देखते हैं लोग तो प्रभावित होते हैं तो खींचे चले आते। कई महिलाएं मेरे साथ आ रही हैं ये बोल के कि मैं आपकी वीडियो देखी इसलिए आई। घर
1: जी
2: के अंदर 24 घंटे काम करो, काम कभी ख़त्म नहीं होता, और फिर रिलैक्स नहीं हो, चिड़चिड़ाहट है, मन खराब है, फिर आए दिन बीमार होने लगी, तो मैं योगा के लिए आई।
1: सनीला कटवा ने हमें बताया कि किस तरह से योग करने से स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है।
3: बहुत ज़्यादा फायदा है, मेंटली भी बहुत फायदा है। पहले बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जैसे 40s के उसमें आई, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे थे, साइकोलॉजिकल दिक्कतें हो रही, तो वो सारी चीज़ें मेरी शॉर्ट आउट हुई। सबसे बड़ी चीज़ तो बच्चों को टैकल करना, सबसे बड़ा इजीनेस होने लग गया और एक्टिवनेस बनी रही। अब कोई शिकायत नहीं है, ना कमर दर्द, ना पाँव का दर्द, कुछ भी नहीं है। एक तो सबसे पहले बात तो पीस, योगा से पीस और एक स्ट्रेंथ बनती है अपनी, और मेंटली हम मतलब तैयार होते हैं फेज में जाने के लिए। एक्टिवनेस रहती है, बहुत हेल्दी मतलब अपने आप लगता है। और पहली बात तो गलत खाने की तरफ तो जाते ही नहीं है। पहले क्या होता, भूख लग रही तो कुछ भी खाते हैं, फैटी है जो भी है, लेकिन अब हमसे खिलते ही नहीं।
1: लाभार्थी कृतिका चौक से भी योग के द्वारा अपने शरीर में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करती हैं।
4: तो मुझे योगा से काफ़ी अच्छा लग रहा है करने के बाद से, ज्वाइन करने के बाद से। योगा में मुझे लग रहा है कि जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये सब जो होती है हमारी, तो ये हमें अंदर से स्ट्रांग करती हैं, और हमारा जो चिड़चिड़ापन और मूड स्विंग्स होते हैं ये काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करता है। तो मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। अभी हम बेसिकली सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, जो कि कहा जाता है कि योगा का निचोड़ है, और एग्जैक्टली ये सही बात है कि ये योगा का निचोड़ है सूर्य नमस्कार। बाकी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं।
1: गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शोभा मैथ्यू ने हमें बताया कि हमें कौन से योग मेनोपॉज के दौरान करने चाहिए।
5: मेनोपॉज महिलाओं को जीवन का एक स्वाभाविक चरण है। इस समय मासिक धर्म बंद हो जाते हैं और शरीर में हार्मोन परिवर्तन होते हैं। इसके कारण गर्मावट महसूस होना, नींद की कमी होना, चिड़चिड़ापन होना, जोड़ों में दर्द, थकान और तनाव जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसी समस्या में योग एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। नियमित योग करने से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। मेनोपॉज के बाद महिलाएं आसान योगा कर सकती हैं, जैसे ताड़ासन। यह आसन शरीर का संतुलन सुधारता है और रीढ़ को सीधा करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। दूसरा वृक्षासन, यह संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। तीसरा योग है भुजंगासन, यह पीठ दर्द कम करते और रीढ़ को लचीला बनाते और तनाव दूर करने में सहायक है। चौथा योग है बुद्ध कोणासन, रक्त संचार बढ़ाते हैं और शरीर को आराम देता है। योग के साथ साथ प्राणायाम भी बहुत लाभकारी है, विशेष रूप से अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम तनाव कम करते हैं, मन को शांत करते हैं और अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि योग हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें। यदि किसी महिला को हृदय रोग, गंभीर गठिया या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं हो तो डॉक्टर या प्रशिक्षित योग विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले। मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जीवन का एक नया चरण है। नियमित योग, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच के साथ हम इस अवस्था को स्वस्थ, सक्रिय और आनंदमय बना सकते हैं।
1: योगा इंस्ट्रक्टर नीलम राजपूत बता रही हैं कि किस तरह से योग हमारी कई सारी समस्याओं का एक इलाज हो सकते हैं।
6: आज के समय में जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है तो शरीर में कई हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, विशेष रूप से बढ़ती हुई उम्र के साथ उनके अंदर प्रोटीन

0: फाइबर, ये सब चीजों की कमी आने के कारण उनका मसल लॉस होता है, मांसपेशियों का एक दर्द शुरू हो जाता है। और अगर दूसरी साइड हम उनकी बोन्स की बात करें तो उनकी जो हड्डियां हैं, कहते हैं ऐसा कि 30 के बाद, 30 साल के बाद कैल्शियम फॉल डाउन होने लगता है, तो कहीं ना कहीं यहीं से हड्डियों वाली समस्या शुरू हो जाती है। इनको तनाव, अनिद्रा, मूड स्विंग, जोड़ों में दर्द, वजन बढ़ना जैसी तमाम समस्याएं होने लगती हैं। प्राकृतिक उपाय है बिना किसी दवाई गोली के, योग का सहारा ले तो आसनों में शरीर को लचीलापन देने के लिए एक सामान्य अभ्यास किया जा सकता है, जिसमें कुछ आसन है जैसे ताड़ासन है, ये बॉडी को एक पूरा फुल स्ट्रेस देता है, जो बॉडी में अकड़न और जकड़न होती है ये इसको ठीक कर सकता है, और ये खड़े होकर किए जाने वाला आसन। दूसरा है महिलाओं के इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, खास तौर से उनका जो मंथली साइकिल होता है, और साथ ही साथ जो रोजाना वो काम करते हैं एक ही पोजीशन में होते हैं, थोड़ा तनाव के कारण बॉडी में अकड़न और जकड़न रहती है, उसको 10 आसन करने की आवश्यकता नहीं है, से 10 मिनट कर लेते हैं तो उनके जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व हो सकता है। दूसरा आसन है सेतु वंदन। आप अगर सुबह सोके जगे हैं ऑन द बेड तो आप वहां पे भी इसको कर सकते हो। कुछ नहीं करना होता है, लेट जाना होता है, घुटने से पैर फोल्ड करके दोनों हथेलियां अपनी जमीन पर या फर्श पे प्रेस करके और हिप्स को ऊपर उठाना रहता है, और ये सेतु बंद आसन एक बनने का काम हो जाता है। मेनोपॉज एक होता है, समय पर ये खत्म होता है और एक बहुत जल्दी आने लगा है। अभी हम बात करें तो 35, 40, 45 की एज में महिलाओं को उनका महीना खत्म हो रहा है। हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत तेजी से होता है, यही समय है जब बीमारियां उनके शरीर में परमानेंट प्रवेश कर जाती हैं। इस समय वजन घटता है और बढ़ता है, उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है योग और प्राणायाम। रक्त संचार अगर अच्छा है आपका तो आपको कोई सी भी बीमारी शरीर में आएगी नहीं, मन शांत रहेगा और साथ में इससे आपके सकारात्मक विचार बने रहेंगे। एक होता है बाल आसन, बच्चों को देखा, बच्चे जब लेटे रहते हैं तो अपने हाथ पैर का मूवमेंट करते रहते हैं। एक ये है अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसकी बहुत चर्चा होती है, क्योंकि ये हमारी 1000 नाड़ियों से एक साथ काम करता है। ये कोई रील देख करके, कोई टीवी पे हो रहा है उसको देख के आप कर रहे हो तो ये ना करें, किसी एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर या टीचर के सुपरविजन में 3 महीने यानी 90 दिन आप इसका अभ्यास करेंगे, आप सीख भी जाएंगे और इसके सही करने का तरीका आ जाएगा। तो योग में ये एक बात बहुत सत्य है कि आप अच्छे से करोगे तो फायदे मिलेंगे, गलत तरीके से करोगे तो आपको नकारात्मक प्रभाव भी मिलेंगे, योग छोड़ता नहीं है।
1: डॉक्टर आभा जैन ने हमें बताया कि किस तरह से हम योग और मेडिटेशन करके अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं।
2: देखिए, आजकल जो स्ट्रेसफुल लाइफ हम सब जी रहे हैं, मतलब हम यानी ज्यादा उम्र वाले ही नहीं, बच्चों को पैदा होते से ही उनके सिर के पास मोबाइल रख दिया जाता है, और जैसे ही वो मोबाइल होल्ड करने लायक होते हैं उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। तो ये बच्चे जो हैं, ये अब किस दुनिया में रहते हैं ये तो अपन सोच ही सकते, ये रियल दुनिया में तो रहते ही नहीं है, ये पूरा मोबाइल पे जो देखते हैं और वो उसकी फास्ट दुनिया, ये उसमें चले जाते हैं, और जितने भी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, उनके गेम्स खत्म हो गए, उनके सोशल जो उनके कॉन्टेक्ट थे, उनके दोस्त खत्म हो गए, और वो किस दुनिया में रहने लगे, मोबाइल की दुनिया में। ये बच्चों के हाल नहीं है, ये जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, और अगर हम जॉब करते हैं तो उस समय हमको टाइम कम मिलता है, इसीलिए हम ये जो मोबाइल की दुनिया में जो है, जो कि एक मेरे हिसाब से तो एक दुनिया जो है जो आपका जीवन ही खराब कर रही है, आपकी बॉडी एज वेल एज आपके माइंड और आपके सोशल सर्कल सबको अफेक्ट कर रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आप रिटायर हो जाते हैं, आपके पास अपने लिए टाइम ज्यादा होता है, बच्चे भी चले जाते हैं, वो अपना नीड छोड़ के अपनी अपनी जगह चले जाते हैं, घर के काम में भी हमको इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो देखिए, सारी तरह की बीमारियां हार्मोनल इम्बेलेंस से लेके आपकी बोन वीकनेस से, मसल वीकनेस से, आपकी जो ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो भी इसके कारण कम हो जाती। तो इसके लिए हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है, हमको अपने लिए समय निकाल के योगा और मेडिटेशन, ये मतलब मजाक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अरे ये तो सब बोलते हैं, ये जहां जाओ तो वो बोलते हैं योगा मेडिटेशन, भाई ये तो रिक्वायरमेंट है, और इस समय की रिक्वायरमेंट तो ज्यादा है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके अपने मूवमेंट्स कम करते जा रहे हैं। तो इस समय अगर हम योगा और मेडिटेशन को अपने जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे खाना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, सोना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, पर मोबाइल के साथ में तो सोना भी जो है उसका भी कोई भरोसा नहीं, कि रात के 12 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, हाँ स्क्रोल कर,

0: रहते हैं, और जो बच्चे हैं वो आपको देखा देखी वो भी करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चों का डेवलपमेंट एज वेल एज आपका भविष्य ये दोनों खराब हो। तो सारी फीमेल्स एज वेल एज मेल्स सबको मेरी एडवाइस है कि सबसे पहले तो ये जो झूठी दुनिया से आप अपनी दुनिया में आइए, कम से कम अगर आप 40 प्लस हो गए हैं तो 40 मिनट तो आपको अपने शरीर और अपने दिमाग के व्यायाम के लिए देना है। शारीरिक व्यायाम के लिए आजकल योगा इंस्ट्रक्टर्स इतने सारे हो गए हैं कि ऑनलाइन ही आपको जो आपका जो प्रिय मोबाइल है उस पे भी आपको योगा इंस्ट्रक्टर्स मिल जाएंगे, जो कि आपको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको योगा करना है। और योगा ऑप्शनल नहीं है कि भाई कभी कर लिया कभी नहीं करा, आपको इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो भी एक समय तो आपके लिए निकल सकता है जब आप ये कर सकते हैं। और योगा के साथ में, योगा के बाद अगर मेडिटेशन कर लिए तो सोने पे सुहागा है। ये आपका बोन हेल्थ ऊपर से नीचे पहुंचते हैं, आपके ब्रेन का हेल्थ उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे के जाके मेमोरी लॉस होना, अल्जाइमर होना, ये बड़ा कॉमन हो गया है आजकल। और ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम अपने दिमाग को उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। शरीर का उपयोग करने के लिए आप सारे योगिक एक्सरसाइजेस करिए, तो उससे आपके बोन्स, लिगमेंट्स, आपके मसल्स, आपके हार्ट हेल्थ, आपकी ब्रेन हेल्थ, आपके हार्मोनल हेल्थ, ये सब अच्छी होगी। एक एज के बाद क्या आपके हार्मोन्स खत्म होने लगते हैं, जो कि ईस्ट्रोजन हार्मोन है, जो कि आपकी जो बॉडी है उसको एक फेमिनाइन सारा लुक देती है, साथ में आपके सारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, आपको ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है और आपके बोन हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे 40 के बाद, और 50 के बाद तो और भी ज़रूरी है, कुछ नहीं है तो आप घूमने निकल जाइए पैदल। शुरू शुरू में आपको ऐसा लगेगा बड़ा थकान हो रही है, बड़ी बॉडी एक हो रही है, मसल पेन हो रहा है, पर ये 10-15 दिन की बात है, उसके बाद तो आपकी बॉडी को बड़ा अच्छा लगने लगेगा। और उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि भाई बगैर इसके तो मुझको मज़ा नहीं आ रही है। तो आप एक्सरसाइजेस के लिए टाइम देना बहुत ही ज़रूरी है, फिजिकल और मेंटल। मेंटल एक्सरसाइजेस के लिए आप दिमाग चलाइए, आप थोड़े पजल्स करिए, आप कुछ चीज़ याद करिए। अगर आप लिखना अच्छा लगता है तो आप लिखिए, आप बुक्स रीड करिए। देखिए बुक्स रीड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बच्चों से लेके बड़ों तक, बूढ़ों तक, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कौन कर रहा है आजकल? ओल्ड एज पॉपुलेशन, जो कि अब घर के अंदर ही बंद हो गई है ना, कहीं सोशल सर्कल नहीं रह गया है, बच्चे अपने अपने में बिजी हो गए हैं, तो अब कोई उनको टाइम नहीं दे पा रहा है। भाई बच्चे भी अपने काम में बिजी है तो कितना टाइम देंगे। अब आपको एक अपनी अलग दुनिया बनाना है। अलग दुनिया कैसे बनाएंगे कि भाई सुबह से आप अपने फ्रेंड से मिलिए, सब लोग मिलके कहीं पे योगा करिए, कहीं एक्सरसाइजेस करिए, साथ में हंसिए, बात करिए, ज्वाइन करिए उनको। आपका डोपामिन सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगा, आपका जो कि आपका आपके ब्रेन हेल्थ, आपकी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी खुशी के लिए ज़रूरी है। और आपका जो कॉर्टिजोल हार्मोन है जो कि आपका स्ट्रेस बढ़ाता है, और ये बढ़ने के साथ ही आपकी हार्ट हेल्थ, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा लेता है और आपके बॉडी के सारे हार्मोन को तोड़फोड़ मचा देता है। तो इसीलिए अब आपको अपने लिए टाइम देना है। टाइम मतलब अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आपकी बॉडी, आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स सब आपके साथ रहे, आपकी बोन हेल्थ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एक एज के बाद में, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो बॉडी कैसी हो जाएगी, खड़क हो जाएगी और आप सारे मूवमेंट्स जो है नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ योगा, योगा इंस्ट्रक्टर से सीखिए, मोबाइल पे सीखना उस पे सीखे, बाहर जाके सीखेंगे तो लोगों का साथ भी मिलेगा, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है।
1: तो हमने जाना, बढ़ती उम्र में योग न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक बेहतरीन साधन है, बल्कि ये मानसिक शांति, जोड़ों के दर्द में राहत और संतुलन सुधारने में भी अत्यंत लाभकारी है। इसे किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है और बढ़ती उम्र की सभी समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है।
2: बढ़ती उम्र में महिलाओं के लिए योग का महत्व विषय पे आप जा स्थल रिकॉर्डिंग पे आराधित कार्यक्रम सुन रहे थे, और रिकॉर्डिंग सहयोग तो पूनम सरावगी को, कार्यक्रम संयोजन श्री चंद्रशेखर शर्मा को। तो भैया अब बारी है आपकी पसंद के फिल्मी गीतों की। पहला गीत हम आपको सुनवाए देते हैं फिल्म प्यासा सावन से, और गाव है लता मंगेशकर ने, और जा गीत के लाने पसंद करो है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर और ऋषिका रोबिन ने सुना इनकी पसंद को, जो गीत आपकी पाती आपके फिल्मी गीत के अंतर्गत।

भैया आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत को जो अगलो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इखो पसंद करो है रामचंद्र माखीजा काफिर, शंकरलाल माखीजा, राहुल कुमार माखीजा, श्रीमती सबीता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार ने बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से जो पत्र है। अब हम जो अगलो गीत इनकी पसंद पे सुनवा रहे हैं वो है गाँव है श्रिया घोषाल ने और फिल्म है बरसोरे मेघा।

0: क्या बात है भैया, आप लोगों ने बड़े अच्छे गीत पसंद करे थे। हमारे सभी श्रोताओं के लाने भी जरूर पसंद आए हुई हैं। आप भी ऐसे पसंद के गीत सुनना चाह रहे हैं तो हमें पत्र लिखें। ग्राम सभा कार्यक्रम आपकी पार्टी आपके फिल्मी गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 4620002। अब दो आज्ञा मनोज भैया को स्वीकार करो, दो ही हाथ जुड़ेगी। राम राम।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8 बजे हैं, अब आप आनंद लीजिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का।

कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। संगीत से सजाया इस गीत को खय्याम ने, गीतकार जानेसार अख्तर और फिल्म का नाम है रजिया सुल्तान। तो आइए आनंद लेते हैं इस प्यारे से नगमे का।

हेमलता और येसुदास की आवाज़ में अभी आपने सुना चित चोर फिल्म का गीत। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुलजार के बोल आर डी बर्मन का संगीत और फिल्म का नाम है आंधी।

लव इन टोक्यो। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी नगमा। फिल्म का नाम है हम दोनों, साहिर लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत और आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफ़र समाप्त होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। रात के 8:30 हुए हैं। अब आप आनंद लीजिए पॉप म्यूज़िक के कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अलीशा चेन्नई की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ।

0: अदनान सामी की।
1: गुजरे जो मेरे घर से तो रुक जाए सितारे,

आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी पॉप सॉन्ग। आवाजें हैं अदनान सामी और आशा भोसले की।

अदनान सामी और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। इस गीत के साथ ही पॉप म्यूज़िक का कार्यक्रम समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:35

0: 41 मिनट हुए हैं। अब आप सुनिए समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, इस सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार

0: आतंक, आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट

www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों

0: धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए शमशाद बेगम की आवाज में। नगमा निगार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन और फिल्म का नाम है

0: आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में अगला गीत। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, संगीत है जय देव का, फिल्म का नाम है मुझे जीने दो।

0: इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है गीता दत्त की आवाज में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना मदन मोहन की, फिल्म का नाम है भाई भाई।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है हमराही।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा

0: कहता मैं आया है राजा,
1: लो गोरे लो गो।
0: राजा के संग संग
1: जुमलो जुमलो
0: आया है राजा,
1: लो गोरे लो गो।
0: राजा के संग संग
1: जुमलो जुमलो।
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक

म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की। वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या जोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

0: इसके बाद आई फिल्म पा।
1: उड़ी उड़ी हाँ उड़ी मैं फिर उड़ी उड़ी इत्तेफाक से, जुड़ी जुड़ी हाँ जुड़ी मैं फिर जुड़ी जुड़ी।

और फिर आई फिल्म शमिताब, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहां आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं।

इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैया राजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैया राजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलिया राजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहां तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने

तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

0: सन्नाटा।
1: जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश

0: डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहां जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मोल भाव न कोई नापतौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम होले।

खोजती हैं ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहाँ गुम है। ढूंढूं कहाँ उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है। हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गंवाया है। जितना दिया पास से अपने, लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

दिल की सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया की भीड़ में मिला है एक हम कदम। तो मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला लें कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ाए हम।

दिल का क्या भरोसा तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है। हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें, जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ, तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10:30 हुए हैं। अब आप आनंद लीजिए कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं काला बाजार फिल्म के इस गीत के साथ।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना काला बाजार फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले।

0: के युगल सुरमी। फिल्म का नाम है दिल्ली का ठग। इस गीत को संगीत से सजाया है रवि ने और गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी।
1: ये मौसम

ये रातें ये मौसम, अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वरों में ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म ममता से। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार रोशन, और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

रहते थे कभी, लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ में। फिल्म का नाम है खामोशी। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हेमंत कुमार। तो आइए आनंद लेते हैं इस गीत का।

हेमंत कुमार की आवाज़ में अभी आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल। संगीत से सजाया है इस गीत को रवि ने और फिल्म का नाम है 14वीं का चांद।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना चौधरी का चांद गीत। और इसके बाद अब वक्त हुआ है हमारे कार्यक्रम के अगले नगमे का, जिसे हमने लिया है फिल्म गाइड से। संगीतकार और गायक स्वर हैं सचिन देवबर्मन के, और इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

एस डी बर्मन की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत हम आपको सुनवाते हैं मन्नाडे की आवाज में। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन और फिल्म का नाम है सौदागर।

सौदागर। अभी आपने सुना मन्नाडे की आवाज़ में ये गीत। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का सफर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात के 11 बजे हैं। अब आप सुनिए समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।